0: 4 59 801 जनक पौडेली 98 5 20 58 344 र 029 5 60 248।
1: दुर्गा ज्वेलरी उद्योग खाँदारी 1 बुद्ध टोल सङ्खुवा सभा।